0: Zirconia.
1: Extreme energy drink.
2: एनएम बिगारा बचत खाता प्रदेश को प्रगति संग बचत को नाता
3: रारा को निर्मल पानी जस्ते सोच आफ्नो अमूल्य बचत आज खोलौ कर्णाली प्रदेश विशेष एनएमबी रारा बचत खाता
4: पाउनुहोस् पहिलो वर्ष निशुल्क मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड डिमैट र मेरो शेयर पनि
2: प्रदेश को प्रगति संग
5: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
6: रेडियो भेरी एफएम 98.6 102.7 मेगाहर्ट्ज

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

सकारातिसेवितं सपीतजम्बूफलचारुवर्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।